नान जंतु पाई का समल सबना जीन करते करना किया चिंता पे कनिता सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान।

0: साहेब शुभ स्वालियो जिनकी तीस पर पिया कहु नानक करते क्या बाता जो किसका ना सुकारिया महला दूजा जोग शब्द ज्ञान शब्द बे शब्द ब्राह्मणे
1: खत्र शब्द सूर

लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पैना मिया लख ठगिया पैना मिया रात दिन जीना तग कपा कतिए बामण वटे आए कुछ बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए प्राण सुटिया पीफर पाइए होर नानक तगन टुटे

सुनता की ओटा साधु संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मै तिनते धीरज पाया। संति मंत दियो मैं निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत ले ओए मां बिखादी सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्बाणी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट प्रादी तरियारे। गुरु नानक जिनी सुनिया पेखिया से फिर गुरु भाषण परियारे। सो कहो टल गुरु सेविया अहनस सहज सुवाई। दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाई। दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाई। सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

जिन हर नाम त्याया गुरु प्रसाद गुरु प्रसादी मन वसाया नानक सेवड भागी जिन हर नाम त्याया गुर प्रसादी मन वसाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इको ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद हम अवगुण परे एक गुण नाहीं अमृत शाड बिखाय बिखाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाट कीरत की

पूरे गुर ते नाम पाया जाए, सच्चे शब्द दे राही सच समाए। कहिंदे सच दे विच समा जाईदा जदों गुरु उपदेश कमाउने आ, गुरु उपदेश कमाउंदे आ होया फिर गुरु साहिब जी दे दसे राह ते चलदे आ, मार्ग ते चलदे आ, उस अकाल पुरख नाल सांझ बन आउंदी।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ने ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन आर को बेंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है।

जी, आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दारे बख्शे। आप जी दे हजूर रात्रि वेले दे, आप जी दे हजूर अमृत वेले दे गुरमत दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ी वार कथा विचार छे पौड़ियाँ आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दियाँ सेवा संभाल करदियाँ अनेक प्रकार दियाँ भुल्लां गलतियाँ हो जांदियाँ ने। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी अगां तो सुमत बख्शनी दार आई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावान दर मंजूर करनियाँ यात्रावान सफल करनियाँ जी। सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो जीव छके आप जी का पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी। आप जी करो कृपा अमृतमयी बाणी विचों पावन हुक्म बख्शो हुक्म अनुसार जीवन जौंदी समरथा सूझ बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चुत्या वै नान।

बोले सो निहाल सात श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

तट तीरथ सब धरती भ्रमियो दुविधा छुटकै नाही। कनक दुविधा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो। सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरे ए बिद, जे लख जतन कराए। कनक कामनी है वर गैवर, वाओ बिद दान दतारा। अन वस्त्र भूम बहु अर्पै, नै मिलिया अर द्वारा। पूजा अर्चा बंधन डंडाओ ता,

योग सिद्ध आसन 84 ए पी कर कर रहे वड्डी आर जा फिर जन्म हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म फारा सेज सोनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीरत सत्संग है सिर करमन के कर्मा

दुख पंजन हर हर कीर्तन एवं रता तेरो सेवक ए रंग माता प्रभु के पाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर काल मूरत अजूनी साहब अंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहब अंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहब अंगुर प्रसाद। वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु

भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाय सो कहो तल गुरु सेविए नुससै सुभए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए

पूजा अर्चा बंधन डंडावत खाट कर्मा रात रहता हाओ करत बंधन मैं परया नह मिलिया ए जूता जोग सिद्ध आसन चौरासी है।

चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा। हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा। कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे कालना।

होर नाही कोय, ना को होआ ना को होए, जे वड आप ते वड तेरी दात, जैनों देनों करके कीती रात, खसम

चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनौ करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के बड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सही मिल

रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो धरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहो जनन पिता लोक सुत बैंता कोई ना किसकी तरिया सिर से रिजक स्वाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया उड़े उड़ आवे सैकों सां तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा बरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा बरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्याँ वह सब त्याँ वह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बड़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबान हर त्यावहे हर त्यावहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर त्याया जी तेना टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो ते आया जी तिन का पो सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर निके अनेक अनंता

श्रेष्ठ सब पाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मिंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहो सब तेहरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमखला दा मन मुगवाया तुदे आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ मिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खे वियोग मिल विछड़या संयोगी में जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद मिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े भई रे निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजो मह पग नहीं चाले हम देखा तहें डूबी अले मान एक न चेतस मूड़ मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाऊ।

इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम काबहो, आभा दे मुहि बचाबहो। सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आय संगरिए।

पाऊं सेवक सिखा हमारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आभाद मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है।

सन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सवलोक सवारा नमस्कार हैं तहें हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव देंद जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो खड़गड़ के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछानत चिंटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट की पढ़ पढ़ की जन्ने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर

आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेर है तिन रलम, जानत बेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिर अनाद असंभ, तका मूड़ उचारत भेदा,

जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत नह पिव आप आपनी बुध जेती भरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा।

कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंपा आजुगा स्वरूप स्वयंपा अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे वार आसिक संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण गाता जे आस्तु जे तब शरण ही परे तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जहे न हरे हो ताकि ताप तनक मै हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शह शवय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा।

हरी सरठ महो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे तबते को आंख तरे नहीं आन्यों राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यों सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुपेद कहे हम एक ना जान्यों।

तोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार मही गए की लाज अस गोविंदास तोहार।

गोविंदास्तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तावाया सहज सीती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्द तंगावो हरी के राग

हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गलना समृत स्वामी सो क्यों हो मनो मसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही हर तेरा करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिरत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया

सच्चा नाम मेरा धारो, सच नाम आधार मेरा, जैनो भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन है वसिया, जैनो इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों।

करो वाजी पंशव तित कर सुपागे कर सुपागे शब्द वाजी कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीती काल कंटक मारिया थोरे कर्म पाया तुद जिनको से राम हर की लागी कहे नानक तैं सुख होआ तिथि कर अन्नहद वाजे आनंद सुनहो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गोरते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाहद तुरे मुंदामणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो

तेरा कीता जतो नाहीं मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई।

दोहराऊं आग्या पैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिल वोच है। राज करेगा खालसा, खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे। बोले सोनिहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर पौहण आए मुहे दीन कृपा निध ठाकुर नवनिध नाम सवाए सो कहो टल गुर सेविय अहिने सह सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूरे अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठिया सोही है सवना दा वेसाहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठिया सोही है

वाहेगुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवां घर दूजा अष्टपदियां इक ओ आहुकार सतगुर प्रसाद

मन कामना तीरथ जाए बसिया, सिर करवत तराए। मन की मैल न उतरे एह बिद, जे लख जतन कराए। कनक कामणी ऐवर गैवर,

इतनी को हाजरी प्रवान करनी जी हो यहाँ पुला चुका दिखेमा बख्शनी गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दोहराम आज्ञा पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने हो जो

बिमल बुद्ध सुधान पहर सील सनाहो सबद बिदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार।

सच इशनान, अर भोजन पाओ सच, सदा सच पखंत सो है। सच पायो गुर शब्द सच, नाम संगति बो है। जिस सच संजम वर्त सच,

अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाकश फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बोसाज। सो दामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पूरे ते।

कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्ण सिरे ते अगनत तिनको मोह पया मन मद का 84 लख जून उपाई रिजक दिया सबों को तदका सेवक के भरपूर जुग जुग

मल जन्म जन्म दी कटिए, सजन सचा पात साहो, सिर सहां दे साहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सब नाम दा विसाहो। सत